ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 मई 2026। सुबह के 5:53 और 31 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और आइए अब हम आपको बता दें आज एफएम रेनबो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से यानी थोड़ी ही देर में सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, जिसमें गीत गुंजन आपके साथ होंगी और सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर खुशबू घई के साथ। सुबह 8:00 गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में गीत गुंजन आपके साथ एक बार फिर होंगी और सुबह 9:00 खुशबू घई आपके साथ होंगी कार्यक्रम दिल के तराने गाने नए पुराने में, जिसमें आप नॉन स्टॉप लेटेस्ट बॉलीवुड नंबर्स सुन सकते हैं। सुबह 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आवर, इसमें आपके साथ होंगी हिमानी दत्ता और सुबह 11:00 आप सुनेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें राजेश कुमार आपके साथ होंगे और आज इस कार्यक्रम का विषय होगा अप दीपो भवः। दोपहर 12:05 पर हिमानी दत्ता आपके साथ होंगी कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक प्लेट कूल में। दोपहर 1:05 पर मेरा वाला सॉन्ग में राजेश कुमार आपके साथ होंगे और दोपहर 2:00 आशियाना कार्यक्रम में मोक्षी ज्वेल आपके साथ होंगी। दोपहर 3:00 आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज का विषय रहेगा ओरल हेल्थ फॉर ओवरऑल हेल्थ। इसमें कार्यक्रम में आपके साथ रहेंगे एसएम शाहिद। शाम 4:05 पर आप सुनेंगे अल्फा जिन कार्यक्रम मोक्षी ज्वेल के साथ। शाम 5:05 पर कार्यक्रम होगा सिटी लाइट्स एसएम शाहिद के साथ, इसमें आप अपने शहर की सभी जानकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक कार्यक्रम सुरदीप मुखर्जी के साथ और रात्रि 8:00 म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम होगा विकास राय इसमें आपके साथ होंगे, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप डांस हिट्स। रात्रि 9:00 हिना मौज आपके साथ होंगी कार्यक्रम आपकी याद आती रही में। रात 10:00 सुदीप मुखर्जी आपके साथ होंगे कार्यक्रम वेस्टर्न म्यूजिक में और रात्रि 11:05 का समय रहेगा कार्यक्रम रंगे महफिल में, जिसमें हिना मौज आपके साथ होंगी। इस कार्यक्रम में आप गजलें सुन सकते हैं। तो ये थी आज आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1:00 से 2:00 तक सिर्फ आकाशवाणी रेन

0: किताबों पर।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं और अब से कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार होंगे।

0: परिवार कारण आरो समाज के कंट्रीब्यूट करिया पहचान दे नागालैंड स्टेट पूरा दे चर्च दे परिवार लोगों दे मुनकुशी आरो अम्मा खान लगा हेल्थ आरो भल जीवन कारण प्रार्थना करिगिना स्पेशल मदर्स डे सर्विसेस लई मानुखान बरा इदुदिन अम्मा खान लोगों दे होमोय दिगिना आरो खुशी बरा तोहफा दिगिना इदुदिन मनाय इतु अवसर दे चीफ मिनिस्टर निपुरियो बरा सब अम्मा आरो अम्मा लगा रोल लुआ खान के ग्रीटिंग्स जुनाइशे ताई बरा खुशी सब खोर हुले अम्मा लगा थेकपाल काइंडनेस आरो मोरम बरा बनाय आरो खुशी की अम्मा खान बरा नरुकिगिना ताई खान लगा नर्चरिंग आत्मा बरा फैमिलीज आरो कम्युनिटीज के ताकत बरा बनाय दे एडवाइजर यूथ रिसोर्सेज एंड स्पोर्ट्स किशो यमक्योंग बरा खुशी नागालैंड स्पोर्ट्स दे नरुकिगिना कामयाबी उठिया बरा नागा जवान लगा पोटेंशियल ताकिया आरो स्पोर्ट्स हुले डिसिप्लिन एम्पावरमेंट आरो करियर हबिता कारण रास्ता एकटा निशना दिखाई आसे एडवाइजर बरा इतु हुले जुआकाली सोवी मादे नागालैंड पिकल बॉल एसोसिएशन बरा कोलकाता ओपन 2026 ईस्टर्न इंडिया लगा सबसे पहला PWR 400 रैंकिंग टूर्नामेंट दे 11 मेडल्स जीतिया खिलाड़ी कांगे मान दिगिना चरकार क्रिया फेलिसिटेशन प्रोग्राम दे इतु कथा कुरिशे ताई कुशे कॉम्पिटिशन दे डेडिकेशन आरो नारुकिगिना जीतिया बरा स्टेट हुले मिनिस्ट्री बरा फाल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर आरो सपोर्ट पाबले मोटप करिबो
1: are naturally gifted with immense potential. If we apply ourselves with discipline and determination, there is no reason we cannot rise to the highest levels and become professional in the field of sports. Let us believe in our abilities, work hard, and strive to bring bright to our state as well as our country.
0: Minister for Rural Development and SIRT, मित्सुबो चमेब्रा किलारी खानगे बताई दिगिना खुशी कि ताई खान चितिया बरा ताई खान लगा लगन डिसिप्लिन आरो कम्पिटिटिव आत्मा दिखि आसे ताई आरो खुशी आजि स्पोर्ट्स हुइले रिक्रिएशन इक्ला नहोय आरो इतिया बरा इतु आरो इतु बरा कैरेक्टर बना आरो सोशल डेवलपमेंट दे दरकारी काम करे
1: I think the society is changing now, and it's very impressive to see that we have been so dedicated towards your sports, and you will contribute towards society building.
0: Minister Bra Association ke initiative aro lagan bra itu sport promote kriya karone tarif kurishe Department of Animal Husbandry and Veterinary Services bara Mukukchung district te takya Khar district te Chapitkung assembly constituency karone livestock insurance scheme lagu kurishe itu national livestock mission scheme under the livestock farmers karone sosta insurance coverage dsa kundu de beneficiary bra premium laga 15% iklab terawo aro paja 85% hule central aro state sarkar bra subsidize kuriwo itu scheme para ekta household de dosta cattle unit tak cover kuriwo joga इदु अफसर दे कोटा कुरिगिना एडवाइजर ट्रांसपोर्ट टिमजेन मेंबा बरा एलान कुरिशे की बेनिफिशियरीज कारणे फर्स्ट ईयर प्रीमियम हुले कंस्टिट्यूएंसी लगा एलएटीपी फंड बरा कवर कुरिबो आरो फार्मर्स कान के इदु ओनोटि लगा लाभ लोले मुन ओथाइशे डायरेक्टर कोके हेपे क्वेरी बरा कुशे डिपार्टमेंट बरा इदु कवरेज रिलीज स्टेट लगा सब लाइफ स्टॉक फार्मर्स तक पुंचुले बबना रखियासे कुशे आरो सब स्टेक होल्डर्स कान बरा मिल मिलाप लगा चुनाइशे आरो नागालैंड बास्केटबॉल एसोसिएशन बरा जोगाली मिटिपे मादे अंडर 19 बॉयज स्टेट ट्रायल्स लुशे सब मिलेगिना स्टेट पूरा बरा 60 खिलाड़ी चुक लुशे कुंदु माजुदे आइजवाल दे मे 18 बरा 20 तक फाइनल ऑफिशियल सेलेक्शन ट्रायल्स आरो ड्राफ्ट पिक्स लोवले तकिया कारणे नागालैंड रिप्रेजेंट करिवले 15 खिलाड़ी शॉर्टलिस्ट करिशे दुइटा खिलाड़ी स्टैंड बाय निशना राखियासे Junior Kilarigan Aizwalde, June 22 bra July 2 tak under 19 Northeast Elite Basketball League de compete kriwule ase. Aro, achi puchula naga miskoper iman de sis huye se, huni tagibi sam laga naga miskoper 7 baji 10 minute de ani diwule ase.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: टीवीके की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पु से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विविन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर NDA विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके

0: बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसीय समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात

0: टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट कर्नाटका एंड तेलंगाना टुडे टू लॉन्च मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 9,400 करोड़ रुपीज इन हैदराबाद and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Center operationalizes 4 labor codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration tests of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under-15 and Under-17 Championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
4: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation.

0: FM 103 megahertz.
1: उन्हें ठगा सब बिल्ला के स्वागत करें से आकाशवाणी एफएम ट्रैकअपन 110 मेगाहर्ट्ज अरानी डिया से हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम और उन्हें ठगा सब बिल्ला का जी पुरानी हिंदी फिल्म गीत प्रोग्राम था किसे किंतु आजी एक्टम जगह जगह दे ठगा माँ खन लगा स्पेशल दिन हुआ निमिते अपनर खन सब माँ खन के डेडिकेट करी दी गिना गीत खन आनी दिया हो बोले से तो सब माँ खन आई गिना प्रोग्राम ते शामिल हो भी और गीत लगा आनंद लो भी कोई गिना सब के अनुरोध करे से उन्हें ढगा सब बिलक प्रोग्राम सबसे पहला ते आनी दिया से मीनू फिल्म की गीत गाया से आशा भोसले और अंतरा चौधरी

0: करेंगे।
1: होनेठा का सब बिल्ला क्या को स्वागत करे से आकाशवाणी एफएम ट्रैकपिन 110 मेगाहर्ट्ज पर और इटे समय इटे अपना कन करों ने आको आनी दिया से हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम जून्टु एक बजे लोगे जबले से तो होनेठा का सब बिल्ला का अपना कन सब आको वापस आई ना प्रोग्राम ते शामिल लोबी और प्रोग्राम टे अपनार खान हुनी थाकिसे एस जानकी आरो मोहम्मद अजीज लगा वास्ते आखरी रास्ता फिल्मत प्रोग्रामत एबार दूसरा गीत दिया से आर्मी फिल्म की गीत गाय से सदना सरगम आरो कुमार सानू।

दुश्मन दुनिया का फिल्म की गीत लगत आकाशवाणी एफ एम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज़ पर हिंदी फिल्म गान प्रोग्राम दिए यद प्रसेस कर दी से उन्हें ठगा सब बिल्लापते एफ एम रेनबो रिली प्रोग्राम दिया शुनब और एफ एम ट्रैकपन 110 मेगाहर्ट्ज़ आको वापस आम 3 बजे

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है? कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30

3 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी। आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है मेरा वाला सॉन्ग, और मेरा वाला सॉन्ग लेकर मैं हूं राजेश कुमार। दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपकी फरमाइशों को हम आप तक पहुंचाते हैं और अपने व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए आप हमारे साथ जुड़ते हैं। संगीत की इस खूबसूरत महफिल में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, रेडियो की दुनिया में सबसे खास बात होती है क्या कि जब कोई श्रोता अपने दिल की बात एक गीत के माध्यम से हम तक पहुंचाता है। फरमाइशी गीत जो है केवल गाने नहीं होते, बल्कि इनमें छुपी होती हैं बहुत सारी भावनाएं, आपकी यादें, आपके अपने लोगों के लिए बहुत सारा प्यार। और कई हमारे ऐसे साथी हैं जो संदेश भेजते हैं अलग अलग विषयों पर, अलग अलग दिनों पर, अलग अलग तरह के। जैसे आज प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही फरमाइशें कई आ चुकी हैं कि माँ के लिए एक गीत बजा दीजिए। तो आप सभी लोगों को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी फरमाइशें हम तक आती हैं, आई हैं कि ये गाना मेरे दोस्त को बहुत पसंद है और इस गीत से मेरी पुरानी यादें जुड़ी हैं। और सच माने जब हम आपकी फरमाइश पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी जिंदगी की जो छोटी छोटी खुशियां हैं स्टूडियो में पहुंच रही हैं, हमारी भी खुशियां उसके साथ जुड़ रही हैं। तो इन खुशियों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, इन्हें और आगे बढ़ाते हैं हम मिलकर, और अपने उन दोस्तों के लिए जिन्हें मालूम नहीं है कि कैसे अपनी फरमाइशें, अपनी बातें, अपने दिल से कुछ कहते हैं ना कि किसी खास मौके पर कोई खास बात निकलती है और आपको लगता है कि किसी को सुना देनी चाहिए। तो अगर आप हमें सुना देंगे तो हम बहुत से लोगों को वो बात सुना देंगे, क्योंकि हम देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसीज के माध्यम से पहुंचते हैं। दुनिया भर के अलग अलग जगहों से हमें सुना जाता है। हमारा जो मोबाइल ऐप है न्यूज़ ऑन एयर ऐप, तो उस पर आप हमें सुन सकते हैं। तो अब जब बहुत सारे लोगों की आज के दिन से जुड़ी हुई बहुत सारी यादें हैं, तो एक बार फिर से बता देते हैं वो नंबर जिस पर हम आपका जो व्हाट्सएप मैसेज है प्राप्त करते हैं, 9868107070 9868107070। और इस गाने के साथ आप सभी लोगों को मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं।

दोस्तों, इस गीत के साथ हम सभी लोगों के मन में कितनी सारी बातें आती हैं, कितनी सारी बातें आई होंगी, और हम सभी लोग इस गीत के साथ अपने आप को कहीं ना कहीं जोड़ पाते हैं कि वाकई में माँ की जब बात आती है तो हमारे शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी सारी चीज़ें मन में होती हैं उनके बारे में कहने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए, और जितनी कहने के लिए होती हैं उससे कई गुना ज़्यादा बातें वो होती हैं जो अनकही रह जाती है। हम मन ही मन सोचते हैं, माँ के प्यार को महसूस करते हैं, और माँ के बारे में जब हम सोचते हैं तो लगता है कि माँ जो है वो किताब है जिसमें प्यार का हर सबक जो है बिना शब्दों के लिखा होता है। तो आप बस महसूस कर सकते हैं उसको शब्दों में बयां करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर हम बात करें इस प्रोग्राम की, एक बार फिर से याद दिलाएं, तो हर इंसान के दिल में कोई ना कोई ऐसा गीत जरूर होता है जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कोई गीत बचपन की याद दिलाता है, कोई पहली दोस्ती की, तो कोई किसी खास रिश्ते की मिठास को फिर से जगा देता है। और जब वही गीत रेडियो पर आपके नाम के साथ चलता है तो उसकी खुशी अलग होती है। और यही कारण है कि फरमाइशी गीतों का जो सिलसिला है ना, आज भी उतना ही लोकप्रिय है जब पहले फरमाइशी गीत प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तकनीक बदल गई, सुनने के तरीके बदल गए, लेकिन दिल से निकली हुई फरमाइश की अहमियत आज भी वैसे की वैसे ही है। आपके संदेश, आपकी पसंद और आपका प्यार ही हमारे कार्यक्रम की असली जान है। तो दोस्तों, आप भी अपनी पसंद के गीत हमें भेज सकते हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं, उसके साथ कोई याद हो, कोई बात हो, तो वो भी आप हमारे साथ पहुंचा सकते हैं।

और हाँ जरूर लिखिए कहाँ से आप वो संदेश हम तक पहुंचा रहे, यानी कि उस जगह का नाम जहां पर इस वक्त आप हैं। और हमारा नंबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं, 9868107070। इस नंबर पर आप और हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो अब समय आ गया है कि सही में जुड़ते हैं, यानी कि आपके मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो हमने प्रोग्राम शुरू किया था लगभग 1:05 पर, लेकिन आपके मैसेजेस जो है 1 बजने से पहले ही आना शुरू हो गए। तो चलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। और पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा का मैसेज आया है। और मैसेज किया है अनीता वर्मा जी ने पीतमपुरा दिल्ली से। और ये जो पहला आपने गाना सुना ये इनकी फरमाइश का था और ये आप लोगों तक पहुंचा अभी थोड़ी देर पहले। मेरठ कैंट से मैसेज किया है दिग्दर्शन और कविता ने, इन्होंने भी कई फिल्मों के गाने हम तक पहुँचाए, कहा है कि कोई अगर ठीक लगता है तो सुनवा दें। तो बिल्कुल दोस्त, हम कोशिश करेंगे। और लगभग यही कोशिश की है पंकज जी ने अमरावती महाराष्ट्र से। पंकज जी ने क्या किया है कि इन्होंने एक तो आज के इस खास दिन पर सभी लोगों को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी है। लिखा है कि माँ का कोई एक दिन नहीं होता है बल्कि हर दिन ही माँ का होता है। और हमारे हिंदी सिनेमा में माँ पर बहुत बढ़िया गीत बने हैं और कई गीतों का इन्होंने जिक्र भी किया है। और एक गीत इन्होंने जो हमने सुना था उसका भी जिक्र किया है। तो वो गीत जो है पहला गीत इसलिए बना क्योंकि बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं उसको सुनना चाहते थे और हमने सुनवाया। और भी कई श्रोता हैं हमारे जो कुछ और गीतों को पसंद कर रहे हैं और आज के दिन से जुड़ी हुई जो उनकी फरमाइशें हैं वो हमें एहसास दिला रही हैं कि कितना खास है आज का दिन। और इस दिन को और खास बनाने की हमारी भी कोशिश है कि आपकी जो फरमाइशें हैं हम उनको आप तक पहुंचाएं। एक मैसेज आया है प्रवीण चौहान जी खरगोन मध्य प्रदेश से और आकांक्षा का मुंबई से। इन्होंने भी एक गीत सुनना चाहा है माँ पर। और गीत क्या है, गीत जो है वो है फिल्म नीरजा का ये वाला।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग और आपका वाला सॉन्ग आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम। बहुत सारे मैसेजेस आपके आए हैं और कुछ गीत तो आप तक पहुंच भी गए हैं, तो चलिए एक बार फिर से जहां पर पिछला वाला मैसेज छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुँचाई हैं। अगला जो मैसेज आया है ये है, आपका नाम तो मुझे मिल गया है, हाँ, नई दिल्ली के लाजवंती गार्डन से इन्होंने मैसेज किया है, मनोज सिंह जी ने। इन्होंने सभी लोगों को मदर्स डे की शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही रेनबो के लिसनर्स को भी एक गाना सुनने के लिए कहा है कि एक गाना सुनवाइए उन सभी लोगों को और डेडिकेट करना चाहते हैं। तो बिल्कुल दोस्त, हमने उस गाने को ढूंढ लिया है और आप ही की नहीं बल्कि कई हमारे साथियों की वो पसंद है, तो थोड़ी देर में आप सभी लोगों तक वो गाना पहुँचेगा। फिलहाल आपके मैसेजेस जो हैं वो जो हम तक आए हैं उनको भी हम और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जमशेदपुर झारखंड के से मैसेज किया है हमें सुपाही साही गांव से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश तांती और देवेंद्र जी, और इन्होंने कहा है कि प्यारा सा फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, सभी गीत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छा लगा हमें जानकर कि आपको सभी गीत अच्छे लगते हैं। और मनोज सिंह जी का जो मैसेज आया था, इसके अलावा मैसेज आया है, अच्छा आप ऑडियो मैसेज भी कर रहे हैं, वो तो अभी सुनना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट मैसेज करेंगे ना तो हम उसको आसानी से पढ़ पाएंगे। अगला जो मैसेज है, राजू मल्होत्रा, रानी मल्होत्रा, जिला कठुआ, जम्मू कश्मीर से, और इन्होंने कहा है कि एक गाना हमें भी सुनवाइए और गाना सुनने की फरमाइश की है। हितेंद्र दास इनका नाम है, असम से इन्होंने मैसेज भेजा है और इन्होंने भी आज के इस खास दिन पर एक खास गाने की फरमाइश की है। कोलार रोड भोपाल से रामबाबू मालवीय, मनीषा मालवीय और इनके साथ कुछ दोस्त हैं, इन्होंने भी कहा है कि एक गाना सुनवाइए हमें। बिल्कुल जी सुनवाएंगे, आप बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। इला और सौरभ का जर्मनी से मैसेज आया है, लगातार हमें सुनते हैं वहाँ से और अपनी ये बातें हम तक लिखकर पहुँचाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपकी भी फरमाइश हम तक पहुँची है और हमें अपनी फरमाइशों से बिल्कुल रूबरू करवाने वाले हैं। इनका नाम है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु खोरवाल। अगला जो मैसेज है वो है नरेंद्र सोनी जी का, ये कहाँ से मैसेज भेज रहे हैं मैं इनका पता ढूंढ रहा हूँ मैं, देवीगढ़ पटियाला से। इन्होंने लिखा है कि फिल्म का नाम तो नहीं पता है लेकिन रेडियो के लिए और मैं माँ के लिए एक गीत सुनना चाहते हैं। अच्छा ये गाना, चलिए ठीक है दोस्त, हम इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। गुड्डू धाकड़ जी उज्जैन जिले के बेडावन गाँव से लिख रहे हैं कि मैं तो सभी गाने एंजॉय करता हूं और अगर हो सके तो एक गाना मेरी पसंद का बजा दीजिएगा। और इन्होंने कहा है कि ये फिल्म थी हिम्मत वाला और कॉलेज टाइम में ये मूवी इन्होंने 20 दिनों तक लगातार देखी। तो भाई साहब 20 दिनों तक अगर आपने ये मूवी देखी तो क्लास भी तो बंक की होगी। चलिए ठीक है, आपके सीक्रेट ज़्यादा बाहर नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ फिल्में हमें इतनी अच्छी लगती हैं कि हम उनको देखने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं और आपके लिए वो फिल्म इतनी ही खास थी तो आपने उसको देखा। अच्छा लगा जानकर कि आपने इतनी पुरानी चीज़ों को, इतनी पुरानी बातों को हमारे साथ साझा किया। सुमन कर्माकर ये सोनितपुर असम से इन्होंने लिखा है मैसेज, इनके साथ कई और लोग भी हैं, नयन, मीरा, पूनम, शिवानी और प्रशांत, इनका भी मैसेज आया है। और मैसेज भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं, इनका नाम है सारिका उत्तराखंड से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है और फरमाइशों में है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ मैं, नीरज ध्यानी जी शिबू नगर कोटद्वार गढ़वाल से लिखा है कि सभी लिसनर्स को और आपको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये प्यारे गाने जो इन्होंने सुने उसके लिए इन्होंने धन्यवाद कहा है। और साथ ही साथ मैसेज भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं जिनका नाम है पंकज कुमार मनोहरपुर झारखंड से, इन्होंने कहा है कि एक फिल्म है क्रोध, उस फिल्म से एक गाना सुनना चाहते हैं। और गांव मलवाला बटिंडा जिले से बिहला सिंह फौजी, गुरनूर, निमरत, सतविंदर कौर, बलराज सिंह मान और बलकार सिंह मान।

इनका भी मैसेज आया है, इन्होंने हमेशा की तरह पंजाबी गाना सुनने के लिए फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है ये एक बार फिर से मैसेज में इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ, अहमदाबाद से सावन लाल, बस सावन लाल जी का मैसेज आया है। और मैसेज भेजने वालों में है आसाम से काफ़ी मैसेज आ रहे हैं आज, रोमेश पात्रो और रूनू पात्रो, इनका मैसेज आया है, इन्होंने भी एक मैसेज में अपने जो फरमाइश है हम तक पहुंचाई है। और मैसेज पहुंचाने वालों में हमारे साथी हैं धोना और इतेलीवाला उत्तराखंड से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू, इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में शामिल करें, शुक्रिया। और अब वो गीत जो आज के इस खास दिन पर आप सभी लोगों के लिए है, और आप लोगों की बहुत सारी फरमाइशों में इस गीत का जिक्र हुआ है, और वो गीत कौन सा है, ये वाला।

0: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश। और दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय आ गया है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपके जो ढेर सारे मैसेजेस आए हैं उनको इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाते हैं और आपकी फरमाइशों को आप तक पहुँचाते हैं।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है FM रेनबो पर। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग, और चलिए आपका वाला सॉन्ग आप तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है हम उसको आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आपके मैसेजेस को आप तक पहुंचाते हैं। जेल कैंपस बिजनौर उत्तर प्रदेश से कई लोगों ने मैसेज हमें किया है। राहुल सिंह है, साथ में उनके रत्ना, युवराज, आयुष्मान, सुरजीत, अद्भुत और प्रिया, इनका भी मैसेज आया है और इन्होंने भी गाना सुनने की फरमाइश की है। साथ में आपने फरमाइशें तो लिखी हैं, लेकिन कुछ उस फरमाइश के साथ जुड़ी हुई बात भी अगर लिखी होती तो बात बन जाती। प्रणव ज्योति रॉय सिटी सिलचर आसाम से इन्होंने लिखा है एक गाना सुनने के लिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है सिलचर। और अगला जो मैसेज है प्रमिला का कर्नाटका से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और अगला जो मैसेज है ये है सुनीता नेगी सोनू का सोलन से, इनको गाने जो हम पहुंचा रहे हैं अलग अलग फरमाइशें आपकी वो पसंद आया। मोहम्मद सरफराज आलम जोकीहाट दर्शना बाजार अररिया बिहार से मैसेज लिखते हैं, और एक उन्होंने स्वरचित एक शायरी कहें या कविता कहें, उन्होंने लिखा है कि माँ की दुआओं का असर उम्र भर चलता है, माँ की दुआओं का असर उम्र भर चलता है, उसका प्यार हर दर्द में मरहम सा लगता है, जिसके चेहरे से

घर में रौनक उतर आती हो, माँ जैसा इस दुनिया में कोई कहाँ होता है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने लिखकर हम तक पहुँचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज जी आपका। और एक मैसेज हमें किया है, इनका नाम है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ दोस्त, नाम मिल नहीं रहा, कुमार गौरव इंदुरकर, रेखा भाई इंदुरकर, तालुका चिमूर जिला चंद्रपुर से इन्होंने मैसेज किया है। और मैसेज किया है हमें किसने, इनका नाम है राजेश भल्ला जी, एडवोकेट हैं कंकर खेड़ा मेरठ से। इन्होंने लिखा है कि आज कुछ बदली हुई आवाज़ लग रही है, किसी पार्टी में पानी पूरी खाई होगी। ऐसा कुछ पार्टी में तो नहीं गए, लेकिन मौसम जिस तरह से चल रहा है, हो सकता है कि अगर आपको लग रहा है तो हो सकता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ फिर भी हम कोशिश पूरी करते हैं कि किसी पार्टी की वजह से आप लोगों के साथ जो जुड़ाव है उसमें कोई रुकावट ना आए। अगला जो मैसेज है पंकज अमरावती से, इन्होंने, अच्छा है इनकी फरमाइश पूरी हुई उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया है। और मैसेज किया है हमें किसने, आपका नाम ढूंढ रहा हूं मैं, लेकिन आपका नाम, अच्छा सबसे ऊपर लिख दिया आपने, वेरी गुड, लिखा है मनमोहन सिंह जी ने, यूपी के रामपुर जिले के मंडवा हसनपुर गाँव से, लिखा है कि माँ की आंखों में दुआ का समुंदर है, उसकी ममता से हर दर्द बेअसर है, माँ के बिना घर वीरान लगता है, उसका प्यार ही असली जीवन का मंजर है, माँ तू मेरी जिंदगी की रोशनी है, तेरी दुआ से हर राह आसान है, तेरे बिना दिल हर पल खाली है, तेरी ममता ही मेरी असली खुशहाली है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत पंक्तियाँ आपने भी लिखकर पहुँचाई मनमोहन जी, और आपने मन मोह लिया एक तरह से इस पंक्ति से। अगला जो मैसेज है वो है किसका है, जैद और हुडा का, ये गाजियाबाद से इन्होंने मैसेज किया है। और मैसेज भेजने वालों में हमारे कुछ और साथी हैं, और कुछ लोगों की फरमाइशें आई हैं, लेकिन वो कुछ की फरमाइशें ऑलरेडी हम पूरी कर चुके हैं। तो मेघा सिंह का मैसेज है बिहार से, इन्होंने मैसेज किया है और एक गाना सुनने की फरमाइश की है। अमन विश्वकर्मा जी ने मैसेज किया है, कहाँ से, सतना मध्य प्रदेश से, इन्होंने लिखा है कि एक गाना जो है ये डेडिकेट करना चाहते हैं मदर्स डे के मौके पर। वो गाना हो सकता है कि हम आप तक ना पहुंचा पाए, लेकिन उन्होंने जो गाना डेडिकेट किया वो ये है कि सूरज कभी दूर किरण से, चंदा कभी दूर गगन से। आपने ऐसा लगता है कि फिल्म का नाम और ये गाना थोड़ा बदल दिया है जिस तरह से आपने लिखा है। लिखा है आगे इन्होंने कि माँ और बच्चों के रिश्ते पर इससे खूबसूरत गाना कोई नहीं है, और ये बातें लिखकर आपने पहुँचाई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका इतनी प्यारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। अगला जो मैसेज है लिखा है कि आदाब, आपको भी आदाब, हम दोनों बहनें फारिया फरहीन खान रेडियो के जाने माने श्रोता, अच्छा फारूक अली खान की बेटी हैं, और आगे लिखा है कि हैप्पी मदर्स डे, और हम अपनी माँ की गोद में सर रखकर आपको सुन रहे हैं, गीत की गुजारिश है। और गीत की जो गुजारिश की थी वो तो गुजारिश पूरी हो चुकी है, अगर आपने लेट रेडियो ट्यून किया है तो वो गाना दोबारा बजाना तो हमारे लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा। तो वो गाना जो आपने फरमाइश की है वो गाना हम ऑलरेडी अपने श्रोताओं तक पहुंचा चुके हैं। आपके इस प्यार भरे मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि कुमार दिल्ली से मैसेज किया है और आज के इस खूबसूरत दिन की बहुत सारी बातें हमारे साथ साझा की और अपनी बातें लिख पहुंचाई, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राहुल देहरिया का मैसेज, रायपुर छत्तीसगढ़ से, एक गाना कहा था इन्होंने और वो गाना ऑलरेडी, मतलब ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फरमाइशें हैं एक दूसरे के साथ इतनी मैच कर रही हैं कि आपकी जो फरमाइश मैं सुन रहा हूं तो लग रहा है कि हाँ पूरी कर दी गई है। तो एक अंदर से संतुष्टि का भाव आ रहा है कि वाह कितनी सारी फरमाइशें आज पूरी हो गई। और बात असल में ये है कि आप सब लोगों की फरमाइशें जो है एक दूसरे के साथ इतनी मैच कर रही हैं कि हमें बोलने का मौका मिल रहा है कि हाँ देखिए ये फरमाइश तो आपकी पूरी हो चुकी है। अगला जो मैसेज है किशन वंजानी, नीलम स्वाति और किशु का, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से, और इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। अगला मैसेज किसने भेजा है, आपका नाम ढूंढ रहा हूँ, आपका नाम मिल गया है, रूपाक्षी, अच्छा प्रोग्राम अच्छा लगता है, और इन्होंने कहा है कि आज के दिन की यानी कि मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और एक गाना सुनने की भी इन्होंने फरमाइश की है। अच्छा एक मैसेज अभी थोड़ी देर पहले गुड्डू जी ने भेजा था, उन्होंने कहा था कि गाना सुनने जा फिल्म 20 बार देखी थी, तो हमने थोड़ी सी बस यूं ही मजाक में बात कही थी, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए जी हम बंक करके क्लास नहीं जाते थे, हम मैटिनी शो देखते थे रोज, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि फिल्मों के प्रति जो आपका अनुराग है वो भी हमें पता चला, और फिल्म के साथ साथ आपने पढ़ाई पर भी पूरा फोकस किया वो जानकर हमें और भी अच्छा लगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये बात हमारे साथ साझा करने के लिए। मोहम्मद इम्तियाज और सलमा बेगम जवाहर कैंप कीर्तिनगर से, एक बार फिर से इनका मैसेज आया है और एक गाने की इन्होंने फरमाइश की है, और फरमाइश करने वालों में सावन लाल सुनीता, इनका भी मैसेज है एक बार फिर से, और खिलचीपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से भी कुछ बातें हम तक पहुंचाई हैं किसने, इनका नाम है पवन कसेरा जी, इन्होंने भी अपनी बातें लिखकर हम तक पहुंचाई। और अब समय है कि हम आप तक पहुंचाएं एक और गीत जो आपकी फरमाइश है, और वो है
ये वाला गीत।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग। मैं हूं आपके साथ राजेश, और मन का तो कुछ इसी तरह से है, लेकिन हाँ, कहते हैं कि मन पर नियंत्रण होना भी बहुत जरूरी है और कई चीजों पर और नियंत्रण होना भी जरूरी है। तो कहते हैं कि जीवन में जो तालमेल है ना बनाकर चलना, मध्यम मार्ग अपनाना, ये कहीं ना कहीं हम सब के लिए बेहतर एक विकल्प होता है। तो अब गाने के साथ साथ आपके मैसेज और मैसेज के साथ साथ आपकी बातें, इन सभी लोगों को, इन सभी चीज़ों को एक साथ हम जोड़ते हुए, तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचा दी हैं। गुलफाम खान, शाइस्ता खान, आयान खान, आलिया खान, दिल्ली के शाहदरा से इन्होंने एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और मैसेज भेजने वालों में हैं, इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए। तो बिल्कुल जी, आप हमारे इस पूरे जो प्रोग्राम में शामिल हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानसी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। वैसे आपका मैसेज पढ़ते समय मुझे याद आया कि आजकल तो शादी ब्याह का सीजन है, तो नीचे जो हम देखते हैं ना कि जो एक तो बाल मनुहार होती है, इसके साथ साथ फैमिली के जितने भी बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, सबका नाम एक साथ आता है, तो देख कर लगता है कि अच्छा हाँ, फैमिली में इतने सारे लोग हैं। तो आपके मैसेज में भी जितने सारे लोगों के नाम थे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आपने, एक तो उसमें बहुत सारे जो इमोजीज वगैरह भी डाले हैं वो भी बहुत खूबसूरत हैं, और उसके साथ मुझे थोड़ा सा वो, क्योंकि अभी हाल ही में मैंने एक कार्ड देखा तो मुझे फिर उसी से आपका ये मैसेज देख के भी लगा कि ये भी एक अच्छा तरीका है। आफशा खानम और इनका मैसेज जो है, इनका ये पहुंचा हम तक। दामपुर, ये बिजनौर से लिखा है इन्होंने मैसेज, और इन्होंने

लिखा है बहुत सारी बातें, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। लिखा है कि हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मदर्स। मेरी जो अपनी मम्मी जी को इन्होंने याद किया है, उन्होंने बोला है कि वो अब नहीं है लेकिन उनको ये हमेशा याद करते हैं। एक गाना इन्होंने सुनने की फरमाइश की है। और जो है कई हमारे साथी हैं क्या करते हैं कि यूट्यूब के लिंक्स हम तक पहुँचा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये गाना हम तक पहुँचे। वाह क्या बात, आपको बिल्कुल एकदम जरा भी आपको लिखने का जहमत उठाना नहीं है, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और हम तक पहुंचाना है। तो वो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसको हम चलाएंगे तो फिर बाकी चीज़ें चलाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो अगर आप लिखकर भेज देते तो थोड़ा हमारे लिए आसान हो जाता उसको ढूंढना। और रणधीर गुप्ता जी, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता, आपका मैसेज आया है और आपकी भी फरमाइश पूरी हो चुकी है। मोनिका जी उत्तराखंड से, इन्होंने भी एक फरमाइश की है गाने की। और मोनू पाराशर अलीपुर दिल्ली से, इन्होंने कहा है कि एक गाना हमें सुनवाइए। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में सुनवाने की कोशिश करते हैं हम। सोनू फ्रॉम कुंडली, इन्होंने भी मैसेज किया है और इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है। अगला जो मैसेज है हमारे पास पहुंचा है, अच्छा अभी भी लिख ही रहे हैं, सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी और सिमरन मुखी जी, इन्होंने एक गाने की फरमाइश की है और अपनी जो अच्छी अच्छी बातें हैं लिखकर हम तक पहुंचाई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का मैसेज आया है। और मैसेज किया हमें उपदेश शर्मा जी ने किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से। इन्होंने लिखा है कि एक गाना है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, ये गाना सुनवाइए। तो दोस्त कई बार हमारे पास समय थोड़ा कम होता है और फरमाइशें आपकी जो है थोड़ी हमारे पास ठीक ठाक संख्या में आती हैं, तो कोशिश हमारी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें हम आपकी आप तक पहुँचाएं। लेकिन अगर ना भी पहुँचे तो भी हमारी कोशिश आज ये ज़रूर है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा नाम इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और उस कोशिश को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपकी एक और फरमाइश को आप तक पहुँचा रहे हैं।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है मेरा वाला सॉन्ग और आपका वाला सॉन्ग आप तक पहुंचाने की कोशिश में लगा हूं मैं राजेश। दोस्तों आपके बहुत सारे मैसेजेस और आए हैं तो चलिए एक बार फिर से चलते हैं आपके मैसेजेस की ओर और देखते हैं कि आपने और कौन कौन सी बातें लिखकर हम तक पहुंचा दी हैं। मैसेज आया है विनोद कुकरेजा जी का चंडीगढ़ से, इन्होंने कहा है कि गाने सारे बहुत पसंद आ रहे हैं। और मैसेज कुछ और भी हमारे साथी हैं जिन्होंने कहा है कि मैसेज में हमने उनका नाम तो पढ़ दिया लेकिन उन्होंने कहा है कि उनको गीत सुनना था। तो दोस्त गीत तो हम सुनवाने की पूरी कोशिश में, लेकिन कई बार समय का, समझिए कि समय की पाबंदी होती है और गाने कितने हम आप तक पहुंचा सकते हैं उसकी भी एक सीमा होती है, तो उसमें हम बंद कर रह जाते हैं कई बार। नहीं तो हम तो चाहते हैं कि आप इधर से कहें, हमारे पास इतने गाने हैं कि हम दिन रात आप सभी तक चलाते रहे और अपने हर प्रोग्राम में अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए हम अलग अलग गीतों के साथ आप तक पहुंचते भी हैं। रोहन और तारिक का मैसेज आया है रमन मंडी जिला भटिंडा से, इन्होंने कहा है कि कोई भी पंजाबी गाना चला दिया जाए। और कुछ और भी हमारे साथी हैं जिन्होंने अपनी बातें जो हैं हम तक लेकर पहुँचाई हैं। मैसेज कहा है किसने, क्या कहा है, अच्छा इनका नाम है राजू मल्होत्रा और रानी मल्होत्रा। अच्छा इन्होंने अपनी बात में अपना फीडबैक दिया तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त आपका। राहत और गजल का मैसेज भी आया है नेहता और बिजनौर यूपी से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है। और सौरभ अनेजा जी, बहुत आज आपने बहुत लंबा मैसेज लिखा है, मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों से आप इतना लंबा मैसेज आमतौर पर लिखते नहीं हैं लेकिन आज लिखा है कि मेरी कोई सॉन्ग चॉइस नहीं होती है, मैं तो बस शो को एंजॉय करता हूँ और शो को ये सुन रहे थे पर एक नई प्रॉब्लम की वजह से ये मैसेज भेजना भूल गए और ऐसा लाइफ में पहली बार हुआ है और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नज़रिया जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होगा और अगर हम सही से सभी चीज़ें करते हैं तो फिर हम उस प्रॉब्लम से निकल भी सकते हैं और निकल ही जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, हम दुआ करेंगे कि आप इस जिस भी समस्या में हैं आप उस समस्या से जल्द निकलें। और अगला जो मैसेज है कोलार रोड से, एक बार फिर से हमारे एक साथी ने मैसेज किया है, मैसेज भेजने वालों में राकेश कुमार, मनीष कुमार, उमेश कुमार ख्याला के विष्णु गार्डन से मैसेज किया है। और वीरेंद्र सिंह का मैसेज है उत्तराखंड से, इन्होंने भी एक गाने की फरमाइश की है और फरमाइशों में कुछ और भी नाम है जिनका नाम है ये सिक्किम से दवा भूटिया, इनका मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है एक गाना सुनना चाहते हैं और साथ ही साथ कुछ और भी गानों की फरमाइश आई है। अमित का मेरठ से मैसेज आया है और मैसेज भेजने वालों में रवि जोशी जी हैं मेरठ से, इन्होंने कहा है कि किसी भी फरमाइश में आप शामिल कर लें, तो बिल्कुल जी आपको शामिल कर लिया हमने। और कुछ और जो साथी हमारे हैं उनका नाम है निकेश कुमार, बाल मुकुंद कुमार, विवेक, अंकित और दुलार चंद्र, ये सब प्रोग्राम सुन रहे हैं बांका बिहार से और इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। अगला जो मैसेज है आपका, नाम ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं पर नाम तो नहीं मिल रहा है, कोई बात

एक साजिद कुरैशी जी का उत्तर प्रदेश से, इन्होंने भी एक गाना सुनने की फरमाइश की है। और एक और जो है फरमाइश हम तक आई है सोनित कुमार खयाला दिल्ली से, इनके साथ अनुज कुमार भी हैं, दिनेश कुमार भी हैं, उमेश कुमार भी हैं, ये सभी लोग एक बार फिर से मैसेज कर रहे हैं। तो आपके मैसेजेस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब समय है कि आपकी, जैसे आज के इस खास दिन पर, मदर्स डे पर, आपके बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुँचे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह के गीतों की फरमाइश की। कई बार क्या होता है कि किसी खास दिन पर हम कुछ खास तरह के गीत आप तक पहुँचाते हैं, और आज का दिन ऐसा ही रहा। हाँ, हमने उन गीतों को भी आप तक पहुँचाने की कोशिश की जो आज की इस दिन की थीम के साथ नहीं भी मिले, लेकिन हाँ, क्योंकि आपने इतने मन से उन गीतों को सुनना चाहा तो हमने उनको भी सुनवाया। तो चलिए चलते चलते एक और गीत आप तक पहुँचाते हैं, और वो गीत है ये वाला।

दोस्तों इस गीत के साथ ही आप राजेश को दीजिए अनुमति, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद मोक्षी आपके साथ होंगे कार्यक्रम आशियाना में छोटे उस्ताद लेकर, और उसमें कुछ बातें आप तक वो पहुंचाएंगे, और 3 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर, और 4:05 से एक बार फिर से मोक्षी आपके साथ होंगे। प्रोग्राम होगा रेनबो जीनियस, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उन सवालों के सही जवाब देकर आप बनते हैं रेनबो जीनियस। तो चलते चलते आप सभी लोगों को एक बार फिर से मदर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना, और आशियाना में आज हम मुखातिब हैं अपने छोटे उस्तादों से। तो भाई छोटे उस्तादों की आज मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, खूब प्यार दीजिए अपनी माँ को और उनसे पाइए खूब सारा आशीर्वाद। और हम लोग यही बातें करेंगे और भी काफ़ी सारी बातें होंगी, सरप्राइज है आगे के लिए। पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं खूबसूरत गाने के साथ।

0: दोस्तों, आज दिल्ली में सारी माताओं के लिए और सारी महिलाओं के लिए जो माता हैं, जो कई कई रोल अपने जीवन में निभाती हैं, उनके लिए एक छोटा सा फेस्टिवल चल रहा है, जिस फेस्टिवल में अभी इस वक्त हमारी साथी माला जुड़ी हुई हैं। उस फेस्टिवल का नाम है रक्तांजलि। तो हम उनको लेते हैं ऑन एयर। और माला जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं?
1: मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ मोक्षी। और सबसे पहले हैप्पी मदर्स डे टू यू। बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन।
0: आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो और सारे सुनने वाली जितनी माताएं हैं सबको मुबारक हो।
1: बिल्कुल। और मोक्षी, आज मैं जहाँ पर पहुंची हुई हूँ, बेसिकली ये गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन का एक इवेंट चल रहा है। okay. जो मदर्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द फैमिली, उसी की सेलिब्रेशन है यहाँ पर। और लगातार यहाँ पर इवेंट्स चल रहे हैं। रक्तांजलि करके यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें महिलाओं को रक्त दान करने के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया गया है। एंड प्लस साथ में जो बैक ऑफ द माइंड जो एक पॉइंट है, जो एक एम है, वो यही है कि महिलाएं सिर्फ जन्म नहीं देती हैं, महिलाएं जो है वो सुरक्षा भी देती हैं, संरक्षण भी देती हैं और वो जीवन चलाती हैं। तो इसीलिए ऐसी बहुत सारी महिलाओं के आसपास मैं हूँ, बहुत सारी महिलाएं मेरे इर्द गिर्द हैं जो आज समाज को एक ऐसा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं जो समाज के लिए बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में हमारे साथ हैं मिसेस कौर। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अमन फाउंडेशन के तहत कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स रन करते हैं जिसके जरिए समाज को एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू सो मच। आपके बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं सविता बात कर पा रही हूँ।
1: जी, आपसे जानना चाहेंगे मैम, आपका नाम सबसे पहले बताएं और आपकी फाउंडेशन का नाम।
2: मेरा नाम मनमीत कौर है और मेरी फाउंडेशन का नाम है अमन फाउंडेशन। अमन फाउंडेशन।
1: ओके, जानना चाहेंगे आपसे कि आप किस फील्ड में कंट्रीब्यूट करते हैं।
2: हम लोग बेसिकली जो काम करते हैं वो करियर को लेकर करते हैं। करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस में हम लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। जो बच्चे मतलब एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जिनको पता नहीं चलता कि उनको आगे क्या करना है करियर में, इस तरीके के बच्चों का हम साइकोमेट्रिक टेस्ट लेते हैं। जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, वो लोगों के बारे में पता ही चलता है कि आफ्टर द 11th 12th वो लोग क्या करें। तो ऐसे स्कूल्स में हम जाते हैं, ऐसी जगहों पे हम जाते हैं रूरल एरिया में, जहाँ बच्चों को गाइडेंस करते हैं अबाउट देयर करियर, कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं, क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं और वो अपना करियर किस तरीके से बनाए। और इसके अलावा जो बच्चे अपना अच्छा स्कोर

0: ले लेते हैं और उसके बाद ही वो एडमिशन नहीं ले पाते एंट्रेंस के थ्रू, तो उन बच्चों को हम स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। मेनली हमारा काम सिर्फ करियर को लेकर है कि बच्चों को अच्छे पढ़ाई दे सके।
1: तो मोक्षी, ऐसा नहीं है कि अगर हम महिला कॉन्ट्रीब्यूटर्स के बारे में बात करें तो हमारे साथ सिर्फ कुछ ही महिलाएं, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। आइए जानते हैं हमारी नेक्स्ट महिला कॉन्ट्रीब्यूटर के बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू। आई एम कुसुम भूटानी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ फर्स्ट आई स्टार्टेड वात्सल्य स्पेशल स्कूल इन राजेंद्र नगर एंड देन सम वेदना इंस्टीट्यूट फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन शालीमार बाग एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ डेवलपमेंटल क्लिनिक कनेक्ट and we are connected to so many people working with the non-verbal people and doing art therapy to decode their emotions and heal them regularly.
1: मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है यहाँ पर, महिलाएं रक्त डोनेट कर रही हैं, तो ऐसे में हीमोग्लोबिन को लेकर भी जनरली रहता है, महिलाओं का हीमोग्लोबिन लो रहता है, तो ब्लड डोनेशन को लेकर थोड़ा सा उनके मन में भी शंका रहती है, तो इस बारे में उनकी शंका को आप कैसे दूर करेंगी?
2: नहीं, मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि जिस दिन भी जो महिला कंसीव करती है सबसे पहले वो फॉल और वो देते हैं ताकि आपका ब्लड का लेवल ठीक रहे। एंड सेम इज विद द चिल्ड्रन, जब हमें बच्चों में भी माइलस्टोन डिले दिखते हैं या कभी थोड़ा सा उनका लो प्रोफाइल रहता है तो हम उनको ब्लड के लिए बोलते हैं। एंड एट एवरी स्टेप यू नीड ब्लड, सो वन शुड गेट अवेयर कितना आपका होना चाहिए, कहाँ दे के अपनी हेल्प कर सकते हैं और कहाँ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी जेन्युइन प्लेटफॉर्म फॉर द पीपल टू हेल्प देन गिविंग एंड टेकिंग बोथ, क्योंकि मालूम नहीं प्रेगनेंसी के टाइम आपको किसकी जरूरत पड़े, तो जब हम पहले से अवेयर रहते हैं सोसाइटी में अपने और अपनों के साथ तो ये चीज बहुत मदद करती है और हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य भी बहुत कुछ तय करती है।
1: बहुत बेहतरीन जानकारी मैम आपने दी और हमारे साथ इसी के साथ एक और महिला कॉन्ट्रीब्यूटर है, आइए उनके बारे में जानते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।
1: आपका नाम मैम, आपके सोसाइटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम?
3: मैं डॉक्टर शशि रखेजा, सीनियर कंसल्टेंट प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी से RGCIRC रोहिणी से हूँ।
1: आज के इस इवेंट में आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना चाहेंगे।
3: जी, आज का जो इवेंट है डेडिकेटेड टू मदर्स डे, तो फीमेल्स के लिए डेडिकेटेड है। सो आई वुड लाइक टू से कि फीमेल्स में जो कैंसर सबसे ज्यादा इंडिया में कॉमन है वो दो हैं, ब्रेस्ट का कैंसर और सर्विकल कैंसर। इसी की जानकारी के बारे में देने के लिए हम आए हैं और हम चाहते हैं कि हम और से ज्यादा महिलाओं का एग्जामिन करें, उनको जानकारी दें हाउ टू प्रिवेंट इट और अर्ली डिटेक्शन का क्या फायदा है उनके केसेस में। यही कैंसर के डिटेक्शन के लिए ही आया है। तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी की मशीन आई है, बस है जो, और वो मोर देन 40 के लिए बोला जा रहा है। पैप स्मेयर हम कर रहे हैं फॉर सर्विकल कैंसर के लिए। एचआईवी वैक्सीनेशन के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं कि बच्चियों को वो वैक्सीन लगवाएं ताकि आगे जाके उनको सर्विकल कैंसर नहीं हो। तो ये दो कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर है सर्विकल कैंसर है, इसकी जानकारी, इसके टेस्ट और उनको बताने के लिए कि कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए।
1: मोक्षी, और भी हमारे साथ एक और महिला कॉन्ट्रीब्यूटर है, अलग अलग फील्ड में महिलाओं का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आइए जानते हैं अपनी अगली महिला कॉन्ट्रीब्यूटर के बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
4: थैंक यू सो मच। हाय, आई एम दीप्ति अनेजर, आई एम अ साइकोथेरेपिस्ट एंड आई गो बाय द नेम कॉस्मिक अलाइन ऑन इंस्टाग्राम।
1: मैम आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है?
4: आई वर्क विद वेमेन जिनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो सकता है। पेरेंटिंग कैन बी डिफिकल्ट एट टाइम्स फॉर वेमेन। आज की वेमेन इतनी चीजों में इन्वॉल्व है, लाइक दे आर इन टू चाइल्ड अपब्रिंगिंग ऑल्सो, और वो अपने वर्क एरिया में भी इतने डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के वजह से उनके ऊपर स्ट्रेस भी बहुत हो सकता है। तो मेनी टाइम्स दे नीड अ फ्रेंड, दे नीड अ थेरेपिस्ट। आज की डेट में थेरेपी इज नॉट मेंटल इलनेस, दिस इज द मेन थिंग वी वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड। साइकोथेरेपी इज नॉट फॉर पीपल हु आर मेंटली इल करके नहीं है, ये उन सब के लिए है जो अपने इमोशंस के साथ अपनी लाइफ को और स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, अपने आप को और एम्पावर करना चाहते हैं।
1: क्या बात है। तो मोक्षी, जैसे कि आपने देखा बहुत सारी महिला कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर, और जिस तरीके से उनका कॉन्ट्रीब्यूशन समाज को है और आज के इस इवेंट में जिस तरह से बिल्कुल सामने से भागीदारी दे रही हैं, ये आउटस्टैंडिंग है। और मेरे पास और भी बहुत सारी महिला कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं यहाँ पर, हम उनके साथ भी जुड़ेंगे। बहुत बेहतरीन इवेंट है से जुड़ी हुई. एक एक अपडेट, एक एक इवेंट के बारे में जानकारी मैं आपको देती रहूँ.
5: ठीक है. अच्छा माला जी, मैं ये जरूर पूछूंगी कि ये आप जरा प्लेस और टाइमिंग जरा बताएं कि कहाँ पे हो रहा है ये इवेंट और टाइमिंग क्या है.

0: की?
1: जी, ये जय जगदम्बे टेंट है पीतमपुरा में और ये इवेंट आज के दिन हो रहा है मदर्स डे स्पेशल पर। सुबह 10 बजे शुरू हो गया था और शाम को 5 बजे तक चल रहा है। यहाँ पर महिला कॉन्ट्रीब्यूटर्स को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को सराहा जा रहा है। उनके लिए यहाँ पर तरह तरह की स्टॉल्स लगी हुई है और इसके अलावा उनके लिए अवार्ड्स भी रखे गए हैं।
0: तो आप इकट्ठा करिए और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन, तब तक हम अपने श्रोताओं को एक दो गाने सुनाते हैं, उनसे बातें करते हैं और फिर जुड़ते हैं आपके साथ। और मैं आपको जरूर अप्रिशिएट करूंगी इस चीज के लिए कि आपके सवाल बेहतरीन थे, खासकर हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन। मुझे लगता है यह हर लड़की के, हर महिला के दिमाग में होता है कि हमारा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपसे जुड़ते हैं फिर से एक छोटे से गाने वाले ब्रेक के बाद।
1: थैंक यू।
0: ओके, तो आप सुन रहे हैं छोटे उस्ताद और आज हम मदर्स डे पे खूब सारी बातें कर रहे हैं। आपने सुना माला को, जो अभी एक फेस्टिवल में है, उस फेस्टिवल के बारे में और भी चटपटी, बेहतरीन, प्यारी और इन्फॉर्मेटिव बातें आपको बताएंगी। तब तक सुनिए ये खूबसूरत सा गाना।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: तो भाई हमारे छोटे उस्ताद कैसे ध्यान रखते हैं अपनी माँ का, किस तरह

से ध्यान रखते हैं और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो हमेशा यही बात करते हैं कि माँ हमारा कितना ध्यान रखती है, लेकिन हम भी कितना ध्यान रखते हैं माँ का, ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमारे छोटे उस्ताद क्या अपनी मम्मी से बहुत प्यार से, बहुत लाड से और बहुत तमीज़ से बात करते हैं? अगर हाँ तो आप सही काम कर रहे हैं। और अगर आप उनके लिए कभी कभी स्पेशल फील कराने के लिए कुछ मज़ेदार सा पकाते हैं उनको सरप्राइज़ करने के लिए, तो भी आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। और अभी छोटे उस्ताद और छोटे उस्तादों की प्यारी प्यारी मम्मियाँ हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं और उन्होंने सुना किस तरह से हम पीतमपुरा उनको लेकर के गए थे रक्तांजलि एक इवेंट में, एक मेले में, जहाँ ढेर सारी महिलाएं आकर के पार्टिसिपेट कर रही हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे इवेंट चल रहे हैं, वहाँ हम आपको ज़रूर ले चलेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अभी आप सुनिए ये और भी खूबसूरत सा गाना और अभी हम बात करेंगे ढेर सारी और अपने छोटे उस्तादों से।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आशियाना और हम बात कर रहे हैं छोटे उस्ताद से। लेकिन हम छोटे उस्ताद और उनकी मम्मियों को लेके चलते हैं अभी उसी जगह पे जहाँ पे माला हमारे साथ जुड़ी हुई है। माला वहाँ कर रही है फन, बहुत सारी मस्ती, और अब हमसे साझा करेंगी माला की वहाँ क्या चल रहा है। माला, आप हमको सुन पा रही हैं?
1: मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ आपको मोक्षी, और आपको ये एक सवाल पूछना चाहूंगी
0: जी
1: कि आपको क्या लगता है रिटायरमेंट की एज क्या होती है?
0: रिटायरमेंट की एज तो 60 ही बताई जाती है, जो हम लोग बचपन से देख और सुन रहे हैं।
1: 60? और अगर हम महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम और कितना ऊपर जा सकते हैं?
0: महिलाओं की तो देखिए कोई एज नहीं है रिटायरमेंट की, उनकी तो परवरिश ही वैसी हुई है। लेकिन फिर भी शरीर है, जवाब तो दे ही जाता है, 60 नहीं तो 65 बहुत ज्यादा।
1: अच्छा, तो फिर आपको और ज्यादा एक्सट्रीम सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं हूँ अभी गोल्डन लाइनर्स टंडन मैम के साथ, अरुण टंडन मैम है, एंड शी इज 76 इयर्स ओल्ड। और उनके कंट्रीब्यूशन को सलाम है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से मॉर्निंग से यहाँ पर अवेलेबल है मैम, और आज मैंने बिल्कुल उनको रोक के रखा है। शी इज सेइंग कि मैं सुबह आ गई थी यहाँ पर और हमारा प्रोग्राम लगातार चल रहा है, तो नाउ आई वुड लाइक टू टेक योर लीव। आई सेड नो मैम, यू हैव टू वेट, क्योंकि हम आपका जो एक इंस्पिरेशन है, आपका जो एक मोटिवेशन है, वो हम अपने इस चैनल के जरिए सभी महिलाओं तक पहुंचाना चाहेंगे। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और आप जैसी महिलाओं के साथ आज सर्वप्रथम तो मैं मातृ शक्ति को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत नमन करती हूँ
1: मैम। जिस तरह से 76 की एज में भी आपने कहा कि हर हफ्ते आपके कई सारे इवेंट्स होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स आपके लगातार चलते रहते हैं, तो ऐसे में जो महिलाएं ये सोचती हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो रिटायरमेंट की उम्र है, अब तो शरीर में दर्द रहता है, काम कैसे होगा, आप उनको क्या अपनी तरफ से एक टिप या एडवाइस देना चाहेंगे?
2: निजामबाद सब तो जो है, और उसके अलावा हमें मल्टीपल में भी जैसे कि 6 डिस्ट्रिक्ट है, और उन 6 डिस्ट्रिक्ट के में जो हिस्सा रही हूँ और बड़े अच्छे से निभाया है, और नेक्स्ट मैं एजुकेटर के रूप में आऊंगी मल्टीपल में भी। ये हमारी सोच है, क्योंकि अगर हम सोचते कि हम खाली हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपनी सोच है, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, कुछ भी नहीं और कुछ करना तो काफी करना है, एक कल करके चलेंगे तो चलेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि

0: जी माला माला थोड़ा बीच में आवाज मैम की कट रही है, क्या आप थोड़ा सा देखेंगे? मैम की थोड़ी आवाज बीच में से कट रही है, तो थोड़ा बीच में ब्लैंक जा रहा है, आप देखिए जरा।
1: अभी आपको आवाज आ रही है?
0: आपकी आवाज एकदम साफ आ रही है, मैम की बीच में आवाज बहुत अच्छी बातें बता रही थी, उसी समय उनकी आवाज आना बंद हो गई थी थोड़ी देर के लिए।
1: जी मैम का यही कहना है कि ये सिर्फ आपकी सोच है, अगर आप अपनी सोच से बिल्कुल प्योर हैं और आपके अंदर वो जज्बा है कि आपको करना है तो उम्र इज जस्ट अ नंबर। तो मैम थैंक यू सो मच इस लवली इंटरेक्शन के लिए और अपनी तरफ से महिलाओं को मोटिवेट करने के लिए और आज के इस इवेंट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए, थैंक यू सो मच। तो मुखी जिस तरीके से मैम के साथ बातचीत हुई और जिस तरह से मैं इवेंट के बारे में बता रही थी, एक बार फिर से बताना चाहूंगी, रक्तांजलि है आज के इस इवेंट का नाम और मदर्स डे पर खास तौर पर आज इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द मदर्स फॉर द मदर्स। तो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है, अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर शरीर का जो स्वास्थ्य है, शरीर में जो अंग है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं उसके लिए स्क्रीनिंग्स हैं, टेस्ट हो रहे हैं, एडवाइस किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर हो रही हैं और 10 बजे से लेकर आज 5 बजे तक ये कैंप चल रहा है माँ जगदम्बे टेंट पीतमपुरा में। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं, गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है।
0: मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है कि हमारे लिसनर्स सुन ही रहे होंगे और जरूर अभी तो बहुत वक्त है तो अभी जरूर वहाँ पे जो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं तो जरूर वहाँ पे आएंगे। और बताइए वहाँ और क्या चल रहा है और हम आपको कुछ और रौनक के बारे में वहाँ का बताइए, कुछ खाना पीना और मस्ती, जैसे कि मैं पढ़ रही थी कि कुछ पेजेंट्स भी चल रहे हैं वहाँ पे।
1: यहाँ पर लगातार अवार्ड्स चल रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं जिसमें महिलाओं का कंट्रीब्यूशन है, महिलाएं पार्टिसिपेट भी कर रही हैं और महिलाएं ऑर्गेनाइज भी कर रही हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए, फिर और कुछ और जानकारियां लेकर आपसे मिलती
0: हूं। बिल्कुल, आप कुछ और जानकारियां इकट्ठा करिए, तब तक हमें खूबसूरत सा गाना अपने लिसनर्स के लिए सुनाते हैं। ओके थैंक यू।
1: थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना और हम बात कर रहे हैं अपने छोटे उस्ताद और छोटे उस्तादों की मम्मियों से भी। आप सबको हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
6: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
6: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: प्रोग्राम चल रहा है आशियाना और आज हम मुखातिब हैं छोटे उस्तादों से और उनकी मम्मियों से और सुनने वाली सारी मम्मियों से, क्योंकि आज हम हैं, क्योंकि आपको पता है आज माला कहाँ है। माला है एक ऐसे फेस्टिवल में, एक ऐसे मेले में जहाँ बहुत सारी महिलाएं हैं जो सारी महिलाओं को डेडिकेटेड है जो फेस्टिवल। और माला हमारे साथ अभी जुड़ चुकी हैं। माला आप हमें सुन पा रही हैं?
1: मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ मोक्षी आपको, और आपको बताना चाहूंगी कि अब मैं तीन ऐसी बहादुर महिलाओं के साथ हूँ जिनकी एज मैं ये मान के चलती हूँ कि सबकी एज अबव 50 है और सब यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रही हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हैं समाज के प्रति। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हैं, ये भी संदेश देना चाहती हैं कि अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है और आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
0: आपने ना हीमोग्लोबिन जैसा ही एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा, जैसे वो कॉमन है क्वेश्चन, वैसे ये भी कॉमन है कि अब तो खून बनता नहीं होगा, कर सकते

0: कहते हैं डोनेट की नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, 50 साल के ऊपर। हाँ जी जी जी
1: तो चलिए मिलते हैं पहली महिला से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: हाँ जी मैम, मेरा नाम सलका जैन है और मैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले बीच में भी मैंने पहले भी दिया था काफी टाइम पहले, और बीच में मैंने दिया था लेकिन मेरी ना नर्व पतली होने के कारण पूरा फुल बैग नहीं भर पाया, तो इसलिए मैं दे नहीं पाई। बट आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा फुल बैग भर गया और आगे के लिए मेरा रास्ता खुल गया कि मैं आगे दे पाऊँ। और मुझे लगता है कोई एज फैक्टर नहीं है इसमें, अगर आपका एज भी अच्छा है ठीक है तो करते रहना चाहिए नित्य प्रति, इससे अच्छा रहता है समाज के लिए कुछ योगदान हो जाए, इससे अच्छी बात ही क्या है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम। और आपने जिस तरीके से ये एक मिसाल पेश की है कि उम्र अगर आपको लगता है कि कहीं एक ऐसी लिमिटेशन है जिसकी वजह से आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ एक और महिला कंट्रीब्यूटर मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: नमस्कार, मेरा नाम अलका है, अलका गुप्ता। मेरा बेटा ऑर्गेनाइजर है अमित गुप्ता, उसकी मैं मासी हूँ। तो उन्होंने बोला आना मासी यहाँ पे, उन्होंने सब चीजों का मेरा टेस्ट अच्छे से लिया है, तो उसके बाद मैं ब्लड डोनेट कर रही हूँ।
1: मैम आपकी एज क्या है?
3: मेरी एज 58 है।
1: 58, तो कभी ऐसा नहीं लगता है 58 मतलब अब रहने दो, अपना ही खून कम बनता है, अब क्या डोनेट करेंगे?
3: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोशिश यही रहती है जहाँ पे भी डोनेट हो रहा हो मैं अपना होमोग्लोबिन चेक करवाती हूँ फिर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है।
1: क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस टू यू मैम। आप जिस तरह से समाज को कंट्रीब्यूट कर रही हैं और जिस तरह से लगातार इस कंट्रीब्यूशन को बढ़ाती हैं, और न सिर्फ ब्लड डोनेशन के जरिए बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काम करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अगली कंट्रीब्यूटर है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: थैंक यू।
1: ब्लड डोनेट कर रही हैं आप, डर लग रहा है आपको?
4: बिल्कुल भी नहीं, मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करती हूँ।
1: अच्छा, आपका नाम?
4: मेघा अग्रवाल।
1: मेघा जी आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार जब ब्लड डोनेट करते हैं हम तो अपने मन से इच्छा होती है करें लेकिन घर वाले रोकते, क्या बार बार ब्लड डोनेट करने चली जाती हो? तुम्हारा खुद का भी ब्लड उतना है जो डोनेट करती हो, अपने शरीर का ख्याल करो, कभी ऐसा सुनने को मिलता है आपको?
4: पर्सनली मेरी फैमिली में नहीं मिला, मेरे नेबर्स और मेरे फ्रेंड सर्कल ने ये जरूर बोला है। तो मैं लेकिन 14 साल से ब्लड ऑन डिमांड से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे पता है कि अगर हम ब्लड डोनेट रेगुलर करते हैं तो हमारी अपनी हेल्थ बहुत सही रहती है। ब्लड डोनेट करने से कभी हमारे अंदर कमी नहीं आती, जबकि अगर हम हर 6 महीने में करते हैं तो हमारी अपनी हेल्थ ज्यादा अच्छी रहती है, हमारी जो भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स होती है वो निकलती रहती है, ब्लड फिल्टर होता रहता है, हमारा नया ब्लड जनरेट होता रहता है। ऐसा मैंने रेगुलर ब्लड डोनेट करके देखा है, और पर्सनली भी 3 साल पहले जब मैंने बंद कर दिया था, मतलब 2 साल का गैप आ गया था, तो मेरी अपनी हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगी थी, मतलब मेरा जो मेंस्ट्रुअल रिसाइकल था वो डिस्टर्ब होने लगा था। उसके जैसे ही मैंने दोबारा रेगुलर ब्लड डोनेट करना चालू किया वो वापस अपने आप ऑटोमेटिक लाइन पे आ गया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस,
1: तो मतलब आप फिर महिलाओं को कैसे मोटिवेट करेंगी ब्लड डोनेशन के लिए?
4: मैं रेगुलर उनसे बात कर रही हूँ, अपना एग्जांपल भी देती हूँ। अभी भी मेरे साथ की कम से कम 30 लेडीज ने ब्लड डोनेट किया है आज इस कैंप में, जिनको मैंने मोटिवेट किया था।
1: कांग्रेचुलेशन टू यू मैम, एंड थैंक यू सो मच आपके इस अमूल्य कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आज के इस इवेंट के लिए। 30 लेडीज को मोटिवेट करके एक जगह पर इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है, और ब्लड डोनेट करवाना तो बहुत बहुत बड़ी बात है जो आज आपने कर दिखाया।
4: थैंक यू वेरी मच। इसके लिए पीछे एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3 साल पहले जब मैंने ब्लड डोनेट करना कम किया था, उसका रीजन एक था, मेरी बेटी का और मेरे हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैं सेफ्टी, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ऑलमोस्ट बेड पे थे थोड़ा 1.5 साल के लिए। तो उसके बाद जो हुआ था तो तब मेरे को पता लगा था कि ब्लड डोनेट जो मैंने पहले किया है उसके कितने बेनिफिट मुझे उस टाइम पर मिले, जब मुझे चाहिए था तो मुझे किसी की जगह नहीं देनी पड़ी, मेरे को इमीडिएट ब्लड मिल गया।
1: थैंक यू सो मच मैम। और ये जिस तरह से आप खुल रहे हो, मोक्षी लगातार यहाँ पर इवेंट चल रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ पर हो रहे हैं लगातार, और 5 बजे तक चलते रहेंगे। हम ये मार्च सप्तम्बे टेंट पीतमपुरा जहाँ पर चल रहा है रक्तांजलि इवेंट, जो कि मदर्स डे को टीम में रख के आज ऑर्गेनाइज किया गया है, और यहाँ पर बहुत सारी महिलाओं के बीच में गिरी हुई लगातार इवेंट यहाँ पर हो रहे हैं।
0: और आपके जो बैकग्राउंड में इतना सारा मजेदार साउंड आ रहा है ना, उसी से एक वाइब मिल जा रही है कि आप किस मस्त से माहौल में हैं, बहुत मजे कर रहे हैं आप वो सारा। और एक्साइटमेंट देखिए, जो जितने भी लोगों का अभी आपने इंटरव्यू किया उनका आप एक्साइटमेंट देखिए, कितनी खुश है वो, और कितनी प्यारी बातें बता रही है कि जब उनको जरूरत पड़ी तो उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कितना बड़ा मैसेज दिया है उन्होंने।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इस ऐसी महिलाएं आप

0: आपको यहाँ एक वही कई सारी मिलेंगी और मैं लगातार ऐसी महिलाओं से मिल रही हूँ यहाँ पर।
1: बिल्कुल, तो हम चलते हैं अभी अपने लिसनर्स को एक गाना और सुनाते हैं और फिर आपसे हम फिर से जुड़ते हैं। मतलब
0: ओके
1: ठीक है, ओके ओके ओके माला।

0: तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि माला के पास क्या है, हमारे पास अगला सरप्राइज। माला, आप हमें सुन पा रही हैं?
1: मैं बिल्कुल सुन पा रही हूँ। और अगला सरप्राइज बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मेरे साथ है सुपर लेडी अवार्ड की विनर आशा कथूरिया मैम। और सेवाओं के बारे में तो मैं क्या कहूँ, इतनी मेरी उम्र नहीं है जितनी इनके सेवाओं की उम्र हो गए। 60 साल से सेवा कर रही हैं और आज के इस इवेंट में हमारे साथ जुड़ी है मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आज इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला और आपके साथ मैं जुड़ी और आपने मेरी बात को सुना। मैं सबको ये पहुँचाना चाहती हूँ, मैं 71 और 70 में जो भी मेरे पास कोचिंग लेने आते थे वो बहुत आजकल बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। जब मुझे पहचानते हैं तो पैर छूते हैं दूर से आके, मेरा मन बहुत बढ़ जाता है।
1: मैम, किस तरह का कंट्रीब्यूशन आपका रहा है?
2: बहुत अच्छा। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं लिया कि जो बच्चे दे पाते हैं वो तो हर जगह कोचिंग ले लेते हैं, जो नहीं दे पाते वो मेरे आते हैं। मैं संभल से मुरादाबाद, मुरादाबाद से मैं मेरठ और मेरठ से मैं दिल्ली शिफ्ट किया। मैंने चारों जगह सेवाएं दी हैं।
1: संस्कृत भाषा में आप कोचिंग?
2: हाँ, संस्कृत भाषा में। सेवा भारती से जुड़ी हूँ मैं, सेवा भारती से कोचिंग को भी साथ ले लेती हूँ मैं। बाकी उसमें बहुत सामूहिक विवाह है, अभी करवाए हैं हमने इस एरिया में 36 विवाह करवाए जो हमारे बस्ती से रिलेटेड थे और सभी इतने खुश हैं जोड़े। हम उनको फिर बुलाते हैं, उनको पग फेरा कराते हैं।

0: ଆପଣ
1: अवार्ड है वो यही है कि नंबर ले आओ अपने एग्जाम में, यही मेरा अवार्ड है, यही रिवॉर्ड है। और इस भावना के साथ आज इस इवेंट में भी मैम आई है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोक्षी लगातार यहाँ पर इवेंट चल रहा है, अलग अलग स्ट्रीम से, अलग अलग फील्ड से बहुत सारी महिलाएं लगातार मेरे साथ जुड़ी। और मैं बताना चाहूंगी हमारे लिसनर्स को कि ये इवेंट जो है माँ जगदम्बे 10 पीतमपुरा में चल रहा है, गिविंग इज लिविंग फाउंडेशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, 5 बजे तक चलेगा। रक्तांजलि इस इवेंट का नाम है, जहाँ पर ब्लड डोनेशन के साथ साथ महिलाओं को सम्मानित भी किया जा रहा है, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज है, फन एक्टिविटीज है, तो आए और ज्वाइन करें।
2: और जितने लोग सुन रहे हैं वो और ध्यान से सुने और फटाफट वहाँ पे जाए, उस फेस्टिवल को, उस वाइब को फील करें, मदरहुड को फील करें। बहुत अच्छा लगा। और बताइए आप और क्या बताना चाहेंगी इस इवेंट के बारे में, जो बिन सारी चीजों में डिस्कशन में अगर कुछ छूट गया है तो।
1: नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस बताने की बात करूं तो 5 बजे तक मैं यही बताती रहूंगी। लेकिन जिस तरह से मैंने लोगों का कंट्रीब्यूशन देखा, महिलाओं का कंट्रीब्यूशन देखा, आज पहली एक ऐसी जगह मिली जहां पर इतनी सारी महिलाएं इतना समाज को कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आई, जो कि बहुत अच्छा लगा।
2: बहुत अच्छा। और हमको यहाँ स्टूडियो में बैठ के वो फीलिंग आ गई जो शायद आप वहां महसूस कर पा रही हैं। बहुत अच्छा लगा। हैट्स ऑफ टू ऑल दी स्पीकर्स, आज जितने लोगों ने बोला, जितने लोगों ने आपको इंटरव्यू दिया और आपको भी।
1: Thank you so much.
2: Happy Mother's Day to you once again. Happy Mother's Day to you too and to all the listeners. Thank you, Mala. Thanks a lot.
1: Thank you.
2: तो दोस्तों, ये माला हमको हमारे साथ वहां से लाइव वाइब्स शेयर कर रही थी। और आप प्रोग्राम सुन रहे हैं छोटे उस्ताद, और अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। अब आपके लिए है ये लास्ट छोटी सी पेशकश, इंजॉय करिए।

जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक का यही मैजिक है ना। ये कभी हमें हंसा भी देता है, कभी तो रुला भी देता है, और कभी हमें दूर दूर हमारे जो हमारी यादें हैं उसके पास भी ले जाते हैं। तो यस, अगर आप किसी को अभी तक कुछ भी नहीं बोले हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए, नहीं तो बस बोल दीजिए, आई अप्रिशिएट एवरीथिंग यू डू फॉर मी।

एंड यस माय डियर लिसनर्स, ऐसे ही वक्त बिल्कुल चला गया और हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचा है, तो मैं जल्दी से ले आ रही हूँ आपके लिए ये लास्ट ट्रैक. फॉर नाउ आई एम टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक, प्रॉमिसिंग आई विल बी बैक वेरी सून. यस एंड या थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर संडे आफ्टरनून विथ मी हियर ऑन आकाशवाणी कोहिमा FM Tragopan at 103 MHz.

alak mati bana gas khan. Perennials te bishi sai will be choice annuals aro self-seeding species khan bi nachare. Dup nalagya gas khan do dangor gas khan laga niche de thakibole paribo aro dup lagya khan do khola jaka lagibo. Site te forest garden do dup laga isap te aro bishi traditional garden beds to duribole paribo. Cynodon, Dactylon, Dup, Erigium, Photidium, Nagadania, Gingiber, Aro, Aeroids, Crucuma Shishia, Homalomena, Aromatica, Aro, Merantesia, Aro, Lilicious Members Peris, Polyphylia, Aro, Polygonatum, Cerifolium. Itukan kumba medicinal gas ase, Jundu, Food Forested Halebo Paribo. The Ground Cover Layer. Itu kan to niche mati logo iki ula gas kan ase. Sample species kumba ase kwile strawberries, nasturtium, white clover itu kan nishna ase. Aro pool alak alak prostrate varieties, phlox, aro verbena. Itu kan to habi kumti kurubole bishi lagya ikta ase. Aro mati juntu pukahan ahibo pare itu kan bon kure. The vine layer. Itu laga layer to gas juntu uthina jai itu kan ase. Itu to gas laga branch aro trunks kande uthina jabo aro nachula jaka third dimension kande habitat aro food para cover kuribo. Itu laga kunba fruit gas kan ase kwile kiwi fruit, grapes, passion flower aro vinin berries. Aro wildlife karone ase kwile honeysuckle aro trumpet flower ase. Itu kando climbing annuals kan bi hubo pare. Squash, cucumber, aro melons. Jodi apni dangor deciduous gas kan ase nahuile bi walls, nahuile bi pergolas cover kuribole ase kuile passion fruit, chocos, dragon fruit, grapes, aro kiwi bi thalebole parebo. The root layer. Mati para amikhanke aro alak layer ekta dishe forest garden karone. Itu third dimension do upor aro niche duita bi jai. Bishi ula gas root layer karone to shallow rooted hobole lage. Adua aro loson nishna. Nahoile bi asani para khundibo paria alu aro radish nishna. Itu thakise food forest in Jhum incorporating local indigenous wild edible plants. Itia amikhan pig farming, a means for self-employment, itulaga opore kotha kori dia huni lobo. Gauri to sobse common aro zaruri livestock naga laga bitore ekta ase. Naga khan gauri palya to amikhan puila samoy para dikhibo pare aro ajikali laga samoyte bosti aro town khan debi palya to dikhibo pare. Gauri palya to main to tar laga mongso production karne ase. Nagakang gauri laga mongso to sobse bal ekta khaloa saman consider kure aro bishi quantity te khai. Department of Veterinary laga isap te to janwar mura to gauri 41% constitute kure jundu manukan bishi kha janipai. Survey para janipa to gauri kha to Nagaland sobse highest consumption India laga bitore ase. Demand aro market rate to bishi high thakya karne सब गौरे गौरी पालिया तो दिखे पाए गौरी तो सब मनु पालिया निशना हुए भी डिमांड तो बिशी थकिया कारने सप्लाई तो डिमांड पहुंचा बोना पड़े इतु कारने बिशी उला सप्लाई तो अलग स्टेट ते परा इंपोर्ट करे अमेरिकन ट्रेडिशनली गौरी पालिया तो एक्जोटिक आरो क्रॉस ब्रिड्स गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड परा इंट्रोड्यूस करिया पिछे अलग हो जैसे इतु खान लगा प्रोडक्शन आरो रिप्रोडक्टिव ट्रेड्स सा पिछे थे पिगरी फार्मर्स पिगरी तार खान लगा इनकम जनरेट करे बोले सोर्स एकता हुई जाइशे इतु खाली नहोय ना गौरी खा लो सामान तो किचन वेस्ट परा प्रोटीन आरो फैट्स ते कन्वर्ट करे जुंतु गौरी पालिया मानु लगा पितोरे बिशी कॉमन एकता आसे इतिया भी बस्ती ते थाकिया मानु खान लोकल ब्रीड खान हे पाले जुंतु प्रोडक्टिव आरो इकोनॉमिक नहोय इतु नचुआ जगा बुस्ती सेक्टर्स खान दे ठीक इनपुट्स खान आरो जानकारी खान दिले आमी खान लगा स्टेट ते मंसो प्रोडक्शन तो इम्प्रूव हुबो आमी खान लगा स्टेट तो एकता एग्रीकल्चरल स्टेट हुआ निशना जानवर के खिला आरो खा सामान मेस राइस पोलिश

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM ट्रकबैन 103 MHz, और अभी आप सुन रहे हैं वेस्टर्न म्यूजिक आरजे वेरोनिका के साथ। तो आज क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम वक्त है, मैंने चुना एनरिके को, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है एनरिके का आवाज़ और उनके अंदाज़, जो गाने का अंदाज़ है वो भी मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैं आज पेश कर रही हूँ आप लोगों को एनरिके के कुछ खास गाने जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यस, लेट्स गो अहेड एंड लिसन टू अनदर ब्यूटीफुल ट्रैक बाय एनरिके। दिस इज़ टू लव अ वुमन।

प्रोग्राम टेको हनी वो अपनों की मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर लगा वास्ते फिल्म से कभी कभी और जो गीत लिखिया हुए से शाहिर और म्यूजिक दिया हुए से खयाम।

प्रोग्राम था को हुनी वो किशोर कुमार और आशिया भोसले लगा वास्ते फिल्म से हम किसी से कम नहीं। गीत लिखे हुए से मजरू सुल्तानपुरी और म्यूजिक दिए हुए से आर डी बर्मन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का नियमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में

0: भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूब नगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन्द्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्ट इंडीज विश्वविद्यालय आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू होगी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
3: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और

0: नेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षा कर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heat wave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts 2 cabinet ministers and 4 state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: Mr. Modi said today India is advancing on reforms express and also building modern infrastructure. Mr. Modi said he will like to assure every family in Telangana that center will continue to work with greater speed to realize your dreams.

0: East and West Asia. He urged the people of India to practice restraint, conserve resources, and uphold their duties to help the nation navigate global crisis, comparing the spirit to the collective effort seen during the COVID-19 pandemic. Furthermore, the Prime Minister also attended the 45th anniversary celebrations of The Art of Living at the organization's International Center on the outskirts of the city. The event brought together spiritual leaders, yoga practitioners, volunteers and visitors from different parts of India and abroad. During the program, the Prime Minister inaugurated the newly built Dhyan Mandir, a meditation and wellness complex designed to host yoga sessions, spiritual gatherings and community programs. Prime Minister Narendra Modi also emphasized that the core element connecting India's diverse traditions is the spirit of seva or service, and also highlighted that any mission succeeds when it gains the strength of the society. He commended the Art of Living for its grassroots efforts in tree plantation, rural development, women empowerment and mental health programs for inmates.
1: हमारे यहाँ कहा गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है, ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है।
0: The Prime Minister noted that India's growth, particularly in the fields of technology, innovation and startups, is driven by its youth. He stressed the importance of helping youth find mental peace, staying connected with to their roots and develop a sense of social responsibility.
1: आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है, नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारी युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है।
0: The Prime Minister also called for collective efforts in natural farming, water conservation and environmental stewardship. He linked these efforts to the government's broader Mission Life initiative, which promotes a lifestyle in balance with nature.
1: भारत के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई स्तरों पर सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इनमें आर्ट ऑफ लिविंग जैसे संगठन महत्वपूर्ण भूमिका और ज्यादा शक्ति से इस परिवर्तन के प्रहरी बन सकते हैं। आप में से बहुत से लोग किसानों और ग्रामीण समुदायों के साथ जुड़कर काम करते हैं।
0: The Prime Minister in recent years has repeatedly linked wellness and preventative healthcare with national productivity, mental health and lifestyle management. Officials say institutions promoting meditation, yoga and stress management are now being viewed as complementary to formal healthcare systems. Bengaluru itself has become an important center for this wellness ecosystem, blending technology, education and spiritual tourism. Over the past several years, India's healthcare strategy has increasingly focused on strengthening district hospitals, expanding medical education and improving access to affordable treatment through schemes such as Ayushman Bharat. Telangana has emerged as one of India's healthcare and pharmaceutical hubs, attracting patients not only from neighboring states but also from abroad. The Prime Minister laid the foundation stone for the four-laning of National Highway 167 between Gudebellur and Mehboob Nagar. The highway forms part of the larger Hyderabad

0: Hyderabad-Panaji Economic Corridor and is expected to improve connectivity between Telangana, Karnataka and Goa. Road infrastructure has been one of the central themes of India's developmental push over the past decade. Under programs such as Bharatmala and PM Gati Shakti, the government has sought to integrate highways, ports, rail corridors, logistics parks and industrial clusters into a unified transport network. The Prime Minister noted that over the past 12 years, the government has invested nearly 1.75 lakh crores in national highways, doubling the network in Telangana. Let's listen to what he said.
1: बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है. रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है. करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है और इसका बहुत बड़ा लाभ तेलंगाना को भी हो रहा है.
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो हाईलाइटेड द डेवलपमेंट ऑफ द जाहिराबाद इंडस्ट्रियल एरिया एज पार्ट ऑफ द नेशनल इनिशिएटिव टू बिल्ड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एमिंग टू ट्रांसफॉर्म द रीजन इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस विद वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड आईसीटी नेटवर्क्स. लेट्स लिसन टू व्हाट ही सेड.
1: जहीराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है. यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है. यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहाँ हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है.
0: Another major announcement during the Hyderabad program was the foundation stone for the Zahirabad industrial area in Sangareddy district. The Zahirabad industrial area will include plug and play facilities, logistics support and infrastructure for export oriented industries. Telangana has steadily positioned itself as an investment destination in sectors such as electronics, pharmaceuticals, defense, manufacturing and data services. Industry representatives believe the corridor could further strengthen Hyderabad's role as a logistics and manufacturing hub in southern India. The Prime Minister also discussed the importance of energy for 21st century progress, mentioning the inauguration of the Indian Oil Terminal in Malkapur as a step to strengthen supply chains. He also advocated for the restrained and efficient use of energy resources such as petrol and gas to reduce reliance on imports. Let's listen to what he said.
1: अभूतपूर्व निवेश कर रही मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है. यह टर्मिनल तेलंगाना की बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सप्लाई चेन को मजबूत करेगा. साथियों, बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है. पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है. पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं. ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें.
0: The final major project of the day focused on one of India's oldest employment sectors, textiles. The Prime Minister also inaugurated the PM Mitra Textile Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park. PM Mitra or the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel Scheme is part of government's effort to modernize India's textile sector and improve export competitiveness. Telangana has a long history of cotton cultivation, weaving traditions and textile activity. The Warangal project aims to connect this traditional strength with modern industrial infrastructure and global supply chains. Let's listen to what the Prime Minister said about this.
1: वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति दे।